0: वाहेगुरु जी ने जवाब दिता,
1: भाई कन्हैया जी ने तुहानू रास्ता दिखा दिता है।
0: फिर वाहेगुरु जी ने सिमरन नू कुछ अजिहा दिखाया जो इतिहास विच वापरिया सी। उसने देखा कि ओथे एक बहुत ही समर्पित सिख सन जिन्हां नू गुरु तेग बहादुर जी अते गुरु गोबिंद सिंह जी दोवां दे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होया सी।
2: हे गुरु जी, मैं तुहाडे चरण कमलां च अपना सीस निभाउंदा हां, मैं तुहाडियां सिख्यावां नू हमेशा याद रखांगा।
0: उस दा नाम सी कन्हैया।
2: वाह वाह गोबिंद सिंह, आपे गुरु चेला।
0: अपनी दृष्टि विच सिमरन ने देखा कि किवें एक फौज गुरु जी दे शहर आनंदपुर साहिब ते हमला बोल रही सी। उसने देखा कि जंग दी उस हफड़ा दफड़ी विच भाई कन्हैया जी जख्मी सिखां नू पानी पिया रहे सन, अते नाल ही उन्हां नू भी जिन्हां ने गुरु साहब ते हमला कीता सी।
3: मैं मर रहा हां, मैनू पानी दियो, कृपा करके पानी।
2: पानी पियो अते ठीक हो जाओ वीर।
0: उसने देखा कि गुरु साहिब दे बाकी योद्धे इस गल तो खुश नहीं सन कि भाई कन्हैया जी दुश्मन सिपाहियां दी भी मदद कर रहे सन। ए चंगा काम लगदा है, पर अपने कोल ज्यादा पानी नहीं है, मैनू लगदा है इन्हां नू ए बंद कर देना चाहिदा है। जदों भाई कन्हैया जी गुरु साहिब दे सन्मुख सन तां उन्हां ने ए सब दे सच होण बारे पुछया कि ओ सचमुच दुश्मन दी मदद कर रहे सन, कि ओ दुश्मनां नू वी पानी पिला रहे सन, कि ये सच है। फिर सिमरन ने कुछ अजेहा देखिया जिस नाल उस नू कुछ निवेकला महसूस होया जो उस नू पहला कदे नहीं सी होया। उसने एक संत दे दिल नू महसूस कीता।
2: जी हां गुरु साहब, ये जो कह रहे ने वो सच है। जदों मैं किसे नू भी देखता हां, मैनू सिर्फ तुहाडा चेहरा ही नजर आउंदा है। मैनू सारी मनुखता विच सिर्फ रब ही दिसदा है। मैं किवें उनां दी सेवा ना करां, मैं तां सिर्फ तुहाडी सेवा ही कर रहा हुंदा हां गुरु साहब।
0: गुरु साहिब दे इस संतमई मनुख नू सुन के सिमरन दियां अखां चों हंजू वगण लग पए। ए देखना किन्ना सोहना सी कि किवें गुरु साहिब ने अपने सच्चे सिख नाल प्यार कीता। गुरु जी ने हामी भरी। उन्हां ने भाई कन्हैया जी नू आशीर्वाद दिंदियां कहा कि भाई कन्हैया जी, तुसी जो कीता बड़ा ही चंगा कीता है। तुसी गुरबाणी दे सुनेहे नू चंगी तरह समझिया है। अते गुरु जी ने भाई कन्हैया जी नू एक दवाई भी दिती अते कहा कि तुसी इस दवाई दी मदद नाल जख्मियां दी सेवा करो।
2: मैं तुहाडे तो बलिहारे जांदा हां गुरु जी, अते तुहाडे चरण कमलां च अपना सीस निभाउंदा हां।
0: जिवें ही सिमरन दी अख चों इक हंजू डिगया तां उस नूं इह समझ लगी कि जदों असी रब कोल जांदे हां तां असी सारिआं नूं इक वजों देखदे हां।
4: ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ।
0: ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ।
4: ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੀ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
5: ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ।
4: ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੀ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
6: ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਰਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
0: ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕੀ। सिमरन ने अपनियां अखां खोलियां।
4: वाह!
0: उस पल विच उस नू ए लगया कि उस ने सच नू पा लिया है। बाद विच उस ने इस नवे मंत्र बारे सोचिया अते उस नू पता सी कि उस ने की करना है। अपनियां अखां विच एक चमक लै के ओ अपने घर गई अते अपने मापियां नू दस्या कि गुरुद्वारे विच की होया।
4: वाह पुत्र जी, तुहानू सीधा रब जी कोलो मंत्र मिले है।
2: तुसी गुरु साहिब ते किन्ने प्यारे बच्चे हो।
4: फिर वाहिगुरु जी ने कहा कि प्यार